है टाइपराइटर टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप करता है जिंदगी की हर कहानी लिखता है।